लिखिया बुरी कलम ए ओ लिख लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होय केते तांस्यारियो रूप केते ताचने कुंकुत किता पसाओ ए कोकोबाओ तिस्ते होए लगतरियाओ कुरित कवं कहा विचार बरिन चावा ए कुबर जो तुत पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार बरिये हातरे तंदे नो सॉरी असंख जाप संक बाओ असंख पूछ असंख तपताओ असंख कुरिया मुवेत पात असंख चोग मुराय उदास असंख भग गुंगियान विचार असंग सत्य असंग ततार असंग सुर मुख वक्सार असंग मूल्य लाए तार कुरित कवं कहा विचार बरिन जावा एक बार जो तुत पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंग कमूर राम मकोर असंग खजोर हरा मकोर असंख मार्ग जाय जोर असंग गल्व हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंग कुरियार कुरे फिराए असंग मलेच मलबा खाए असंग निंदा सिकारे वार नानक नीच कहे विचार बरी न जावा एक बार जो तुत पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख नाव असंख ताव अगम अगम असंकलो असंकर सिर भर होय आखरी नाम करी सला आखरी ज्ञांगी कुंगा आखरे लेकम बोलंबन आखर संसंजो विकन जिन लिख ते सिनाए जे फुरमाए ते पाए चेता कीता ते तनाओ विना विनाए कोताओ कुरित कवं कहा विचार परिन जावा एक बार जोत पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार बारिये हातरे तंदे पानी तूते हुतस्के मुत पलीती का पर होय ते सबुन लाए ओ दोय बारिये माँ पप्पा के संग ओ तो पेनावे के रंग पुनी पपिया करनाए कर कर कर न लिखने जाओ आपे पीछा पे विकाओ नानक हुकमिया बो जाओ तीर तत्या दतन जे को पावे तिर के मन सुनिए मनिए मखी तबाओ अंतर गा तिर मनाओ सगुन तेरे में नाए कोय विंगुन की ते वगद न होय स्वास सात पनी बरमाओ सात सुआन सदा मनचाओ कवन सुवेला वत कवन कवन चित कवन अवर कवन सिरुति माओ कवन जितो आकार बिना पाया पंत जी होवे लेख पुराण भगन पायो का दिया जन लेखन लेख कुरान तिते वर न जोगी जाने रूप माओ न कोय जा करता सिद्धि को साजे आपे जाने सोए कीव करा का कीव सलाई कीव नी कीव जाना नानका को साको आके एक लेख सियाना वाद साई बदी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने आके ज्ञान सोए पताला पताला अगस अगस और कबल तके एक हने के बाद सहस तार का कतेवा असुन का एक दात लेखा होय त लेखिए लेखे होय विनाश नानक बाद आखिए आपे जाने आप सलाई सलाई ते सर न पाया नदरिया वे पावे समल न जानिए समल सा सुल्तान केरी सती मलदान किरी तुल न होवनी जिस मनो न विसरे अंत न सिफ्ती के न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वे कैसियो न अंत अंत न जापे क्या मन मन अंत न जापे की ताकार अंत न जापे पारावर आन कर अंक ते वलाए ताके अंत न पाए जाए ए ओ अंत न जाने कोय बहुत कहे बहुत होय
Vadasai Buchatao, Uche Uparuchanao, Ebrahuche Hovekoe, Tisuche Kojanesoe, Jeber Apjane Apap, Nanakanadri Karmidad, Bohota Karamikyana Jai, Badadata Tinatamai, Kete Mange Jotapar, Kete Akananai Vichar, Kete Kaptute Vekar, Kete Lele Mukarpai, Kete Murekai Kai, Kete Adupuk Sanmar, Evidatri Datar, Bandakalasi Banehoi, Horakana Sake Koi, Jeko Kahe Akanpai, O Jane Jitya Mukai, Ape Jane Ape De, Ake Seve Keike, Jisno Bakshisa Fatsala, Nanak Patshai Padishao,

के द्वारे से तुनु गावे जोत पावन रहते तेरे भगर साले होर के ते गावन से मिचित न आवन नानकिया विचारे सोई सोई सदाच साहेब सच सची नाई हेवि होसी जाए रजासी रचन चिन रजाई रंगी रंगी वती कर कर जिनसे माया जिनु पाए कर कर वे के किता अपना जिव तिसकी बरियाई ज्योतिष भावे सोई करसी हुकम न कर जाय सो पति साहु सहा पति साहेब नानक रहन रजाय मुंदा संतोख सरम पचोली दियांकी केरी विभूत किंता खार क्वारी काया जुगदंता परतीत आई पंति सगल जमती मंज जगजीत आदेश से आदेश।

आपनानति सब्जाके हृत्सवरसात संजोग विजोग दुख छलावे लेके अविभाग आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेश एकमाए जुग दिव्याए तिन चले पर्वन एक संसारी एक बंदारी एक लहे दीवन जिव तिस भावे तवे चलावे जिफो वे फुरमन ओवे के ओ न नद्रनावे बहुताय ओ विदन आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेश आसन लोए लोए बंदार चोत सुपावे सोए कवार कर कर वे के सिर जनहार नानक सचे की सचिकार आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेश एक दूजी लाखोवे लगवीस लाख लखेरा आकिए एक नन जगदीश इर पपरिया छुरिया हो इकीस सुंगला आकाश की किता आयेरीस नानक नदरी पाइये कुरे कुरे तीस

अरदास एकोंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पाछाई दसवें, प्रथम भगवती समरखे गुरु नानक लई ध्याई, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हराय, श्री हर हरि हर कृष्ण दियाय, जिस दिते सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिय घर नाव निद आवे दाय, सब ताई होय सहाय। दासफा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब ताई होय सहाय। दसा पातशाह दी जोत तान तान तान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पातेदार दादी अंदर के, खालसा जी बोलो जी सतनाम। पंजा प्यारियां चाहा सबजादियां, चलिया मुक्तिया हटिया जपिया तपिया, जिना नाम जपिया वंचकिया, देख चलाई तेग वाही देखे आंदित कीता। थिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई, दादी अंदर के खालसा जी बोलो जी सतनाम। जिन्ना सिंगा सिंगिया ने धर्म हित सिस दिते, बन बन कताए कोपरिया लोहाइया चरखिया थे चरे, अरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई, कुर्बानिया कीतिया धर्म नही हरिया, सिक्की कैसा स्वासा नाल नबाई, तिना दी कमाई दादी अंदर के खालसा जी बोलो जी सतनाम। सरिया तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दी अंदर के खालसा जी बोलो जी सतनाम। प्रित में सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। नाम चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रेत। देख देख फते बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी बो के बोल बाले बोलो जी सतनाम। सिकानु सिकीदान केशतान रहतान विभेकतान विसादान भरोसादान दाना सिरदान नामदान, श्री अमृतसर जी दे इशनान। चुंकिया जुंदे बोंगे जुग जुगो जुग आतल धर्म खा जय खार, खालसा जी बोलो जी सतनाम। सिका दामन निवा मत ऊंची, मत दारा का आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ देश दा सहाय दाथर जियो, हे न मानिया दे मान न तानिया दी दे तान, नियोतिया दे ओत सच्चे पिता वाहे गुरु। Guru Ji, we thank you for the many blessings, for coming together as a Sangat to hear your life-giving words, meditate on your many blessings, bring our souls closer toward thee. Please bless everyone on this planet with health, with healing, with love. Please bless our guide and teacher, Siddhi Singh Sahib, Bhaisab Harbhajan Singh Khalsa Yogi Ji, who brought us to the Guru's feet. May we always live those teachings and share them. Blessings for health and healing for BBG, bless Midi Pity Academy, bless Darshan Singh on his soul's journey home. Bless Satbachan Kaur healing from surgery. Please bless all the names on this list. May
The blessings of Guru Ram Das be with them for health, healing, and happiness. Please bless Guru's Prasad. May its sweetness bring to us our hearts the sweetness of all the gifts we've been given. May the steel that passes through it bring us courage and commitment. If we have forgotten anything in this Arudas, please forgive us. Akarvada gata bulchuk maf karniji sarvate karajaras karniji se piare mel jinna milyantera nam chit ave nanaka nam charidi kala teribani sarvatabla. Wahe Guruji ka kalsa, wahe Guruji ki fate. Agyan be akal ki tabi chalayo panta. Sab sikana ko hukm hai guru maniyo granta. Guru grant ji maniyo pragat guran ki hai. Jo prabh ko mil moja hai kod shabd mele. Raj krega kalsa akira hai na koi. Kwar hoi sab milenge bacha sharan jo hoi. Raj krega kalsa akira hai na koi. Kwar hoi sab milenge bacha sharan jo hoi.

से मैं चित्न आवन नानक किया बिचारे सोई सोई सरा सच साहेब सचा सची नाही है भी होसी चाहे न चासी रचन चिन रचाई रंगी रंगी पाती करका चिंसी माया चिन उपाय करका देखे कीता अपना ज्योतिष दीवती आई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना चाहे सो पत साहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वंडा आखे सब कोई केवल

मत पाए, ज्ञाने त्याने कुर कुर हाय, कहन चाहे तेरी तिल वड़ी आए, सब सब सब थप संग चंगी आया, सिद्धा पुरखा किया वड़ी आया, तुद विन सिति किने न पाया, कर मिले ना ही थकराया, अखन वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे बंदारा, जिस तू ते तिसे किया चारा, नानक

सब ने ध्याया, जिसने औखे पाकरे तिन नाम रतन पाया, गुरमुखला दा मन मुख कवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियो सब तुझ ही माए, तुद बिन तू जा कोई नाए, जी अचन सब तेरा खेल, विजोग मिल विचुरिया सुन जोगी मैल, जिसनों तू जान आए सोए जन जान है, हर गुण सद ही आक वकान है, जिन हर सेविया चिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया, तू आपे खता तेरा किया सब होए, तुद बिन तू जा अवरा न कोई, तू कर का वेके जाने सोए, चन नानक गुरमुख परकत होए।

मन एक न चेता समूर मना हर बिसरत तेरे गुण कलिया रहा ना हूँ चती सती नहीं परिया मूर्ख मुक्त जन्म पाया प्रणवत नानक

जोबर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सीख हमारे तरिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया आप हाथ ते मुझे उबरिया मलन का त्रासन वरिया हु जो सदा हमारे पच्चा

सब जगत बनायो, देव ते चचन उपजायो, आर अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव गुण को शिव गुण सुकतियो, सत्रन को भलमो मद कियो, गट गट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चित्ती

सतन है आप आपने बुद्ध है चेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुम्हारा लखा नचाए पसारा के बित सचा प्रतन संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पायो रवका ही पुप्पा अंधज जे रज से तज कीनी उत्बुज खंबो हो रच दीनी कहो फुल रचाव है बेटा कहो सिमर पायो संक इकेटा सगरी सृष्टि काय अचंभव आदि जुगात स्वरूप सिंभव आवराचा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संग करो दुष्ट चिते उतवत उत्पाता सकल मलेच करो रन काता जय अस तुज थव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे पुरक चवन पग

तत्काल मन पंच फल पावे सोई दुख न थसे भी आपत कोई अरे सुने कुंक चो आए सो रसना पावई सुने मोर चित लाए चतरत आवई दुख तरत पो नखत न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई सं

सिमरत शास्त्र वेद सब वो वेद कह हम एक न जानियो श्री अष्ट पांकिर पा तुमरी का मैं न कहो सब तो ही बकानियो दोहरा